कर बचत चाओ। यह अमृत बचन बाणी साधु जन जपे करे बचत चाओ। आनंद नित मंगल गुरदर्शन सफल संसार, संसार सफल गंगा गुरदर्शन।

सुंदर दशरथ घर, हर वंश तिलक सुंदर दशरथ घर, मुन पाछे जाकी शरणं सतगुर गुर से।

0: हरबंश तिलक सुंदर दशरथ घर मुन पाचे जाकी शरण सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारन तरण।
1: ऐसा सतगुरु जिन्हें साहिब गुरु अमरदास महाराज नाना दे चरण परसे, जीवन बड़ा अमोलक है। आप जी का शहीदी दिवस ते अवतार पर्व दिवस नेड़े आ रहा है। 23 मई नू अवतार पर्व है, 16 जून नू शहादत दिन है। साहिब गुरु अर्जन देव महाराज शहीदां दे महान शहीद श्रोमणी शहीद सरताज ते बाणी के बोहत साहिब गुरु अर्जन देव महाराज, दुनिया दे अंदर ऐसा कोई पीर पैगंबर नहीं होया जिस नू वर मिल गए हुण अपने गुरु वालों कि ए दोहता बाणी का बोहता है, दोहता बाणी का बोहता है। ते किसे नू ए वर मिल गए हुण कि तत्ती तवी ते बह के भी निरंकार दी सिमरती करन वाला केवल ते केवल एक गुरु अर्जन देव महाराज, साहिब गुरु रामदास महाराज जी का दुलारा, माता भानी का प्यारा फरजंद, गुरु अमरदास महाराज जी का प्यारा दोतर। कैसा जीवन है! सतगुरां ने ऐसी जीवन की दात बख्शिश की। उस सतगुरु गरीब नवाज पातशाह कह रहे हैं, साहिब गुरु अर्जन देव महाराज, मैं अपने प्यो ते दादे दे खजाने नू लभे, लभ ले दुनिया खजाना दूजा लभदी, दुनिया धन का खजाना लभदी, देखते भी धन किवें कमाया जाए, दौलत किवें वधे। ये तो दुखदाई जिहड़ी वध जांदी दुखदाई। कोई भी चीज साडे शरीर की बैलेंस जो वध जाए ना सानू दुखदाई, साडे खून का प्रभाव वध जाए तो दुखदाई, साडे अंदर मिठा वध जाए तो दुखदाई। मतलब साडे शरीर नूं भी अकाल पुरख महाराज ने बनाया तो बैलेंस अंदर बनाया, ते कोई भी चीज वित्तों बाहर चली जाए ना वह दुखदाई हो जाती। धन गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह कहते, नाम जड़ा है जिन्ना वित्तों बाहर जाएगा उन्ना सुखदाई हुंदा चला जाएगा। गुरबाणी गावे भाई वो सफल सदा सुखदाई, बाणी हमेशा सुखदाई है जदों मर्जी पढ़ ली है, जदों मर्जी पढ़ ली। इसे करके तो सतगुरां ने कहा, अठे पैर जपो आठ पैर हर सिमरो प्राणी, अठे पैर इस बाणी नू जपो क्योंकि सदा ही सुखदाई है। कोई चीज सदा सुखदाई होंगी? देखो हुण 24 घंटियां की तरतीब आप वेख लो कि 24 घंटियां के अंदर जिहड़ी चीज आप टाइम के अंदर खाने या टाइम टेबल तो उल्ट खाइए तो वेखो दुखदाई होंगी कि नहीं होंगी। कदे अमृत वेले उठ के किसी ने दोपहर का लंगर तो नहीं रज के खाधा, जे खाधा तो सारा दिन फिर दुखदाई। शरीर का सिस्टम ऐसा, इसनु नाश्ता कह लो, ब्रेकफास्ट कह लो, जीवन दियां जो साडे हिस्से दे विच आईयां ने बनाईयां होईयां साडियां ते उसे मुताबक शरीर चलदा। पर गुरबाणी नू जदों भी गा लईए, जदों पढ़ लईए, जदों जप लईए, सदा सुखदाई, सदा ही सुखदाई। गुरबाणी गावें भाई ओ सफल सदा सुखदाई, सदा सुखदाई। रात नू जप लो, अमृत वेले जप लो, दोपहर नू जप लो, जदों मर्जी जपिए सुख ही सुख है, सुख ही सुख। जपन वालियां ते फिर बख्शिश हो जाती है। जदों बख्शिश हो जाए, आप जपाए जपै सो नाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ। जे वो आप गावांदा ना परमात्मा दे गुणा नू ते गाली दा, जे आप जपाउंदा ते जपी दा, उस दी कृपा तो बगैर ते जपिया भी नहीं जाता।

कर कर रखे तेरे धारे, सही तुदनो गावन जो तुद भावन रथे तेरे भगत रसाले। होर केते तुदनो गावन से मैं चेतना आवन, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सा।

बियले मन एक न चेत समूड मना हर विसरत तेरे गुण गलिहा रहाओ ना हो जती सती नहीं पड़िया मूर्ख मुर्दा जन्म पया प्रणोत नानक तिन की सरणा जिंतु नाही विसरिया। आसा महला पंजवा भई प्राप्त मनुख देहुरिया गोविंद मिलन किए तेरी बरिया अवर काज तेरे किते ना।

जसिन सजायो आद अंत के अवतारा सोई गुरु समझे हो हमारा। नमस्कार तैसे ही को हमारी सकल प्रजा जिन्हें आप सवारी।

रंक भयो राव कई भूपा अंडज जेरज सेत जकीनी पुत पुज खान बोर रच दीनी कऊ फूल राजा है वह बैठा कहूं सिमट पयो संकरो बैठा सगरी सेठ दिखाए अचंपव आज गा जरू स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख अबार असिख संगरो दुष्ट जीते उठवा तत्पाता सकल मलेच करो रण काता जे असुज तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुख है मैं मरे पुरख जम पग परे त्यारे तिनके तुम शंकर सब तारे जो कल को एक बार चय है ताके कारण नय है रक्षा होए तहे सब काला दुष्ट अरिष्ट चले तत्काला कृपा दृष्ट तन जाए निहारो ताके ताव तन कुमारो रिद सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शाश सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा ताल पाते तय उबारा जिन नर नाम त्यारो कहा दाद

बचाई। सोइया पाए गए जब ते तुम रहे, तब ते को आतरे नहीं आने हो। राम रहीम पुराण कराना, अनेक कहे मत एक न माने हो। सिमरत सातर वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जाने हो। सिरियस पान कृपा।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सह सेती मन वजियां वधाइया राग रतन परवार पईया शब्द गावण आईया शब्द तां गावो हरी केरा मन जिनी वसाया

कटकट अंदर व्याप रही, हर जरे जरे अंदर व्यापक मान प्रभु, सर्व जगह दे ऊपर रमिया होया नजर आउंदा। हजूर गरीब नवाज धन धन साहब गुरु नानक देव महाराज पातशाह ने रमे हुए परमात्मा नू इउं फरमान कीता कि वो जल अंदर थल अंदर मही आकाश अल धरती दे सारे दे सारे हिर जगह दे उपर परमात्मा व्यापक मान, जल थल मही अल पूरे आ स्वामी सिरजन हार, अनक पांत होए पसरे आ नानक एक अंकार। एक परमात्मा सारी जगह दे अंदर रमया होया नजर आ रहा है। ये ऐसे रमे हुए परमात्मा नू भगत नामदेव ने अपनी पावन गुरबाणी दे अंदर बड़ा सुंदर फरमान किया, जिस नू साहिब गुरु अर्जन देव महाराज ने प्रवान के बड़ा सुंदर फरमान किया। मेरा गोबिंद सब जगह दे उपर व्यापक मान है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बनने कोई गोबिंद। अकाल पुरख परमात्मा तो बगैर कोई संसार का जरा कोई संसार का कोना खाली नहीं। हर एक जगह दे उपर रमिया होया, बल्कि ऊंच नीच दे अंदर ओदी जोत है। साहिब गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहते हैं, कट कट में हरजू बसै संतन कयो पुकार। ऐसे नू हजूर गरीब नवाज अपनी पावन गुरबाणी दे अंदर ते दसम पातशाह श्री दसम ग्रंथ दे अंदर बड़ा सुंदर फुरमान करते हैं। ते भाई नंद लाल जी अपनी गजलनामे दे अंदर बड़ा सुंदर फुरमान करते हैं, कह रहे हैं

परपत है पार ब्रह्म। परमात्मा वन जंगल दे अंदर भी, तिण घा दे तिणकियां दे अंदर भी, पर्वत पहाड़ां दे अंदर भी, जल दे अंदर भी, फल दे अंदर भी, हर एक जगह रमे है। सुखमणि साहब धन गुरु अर्जन देव महाराज प्रमाण करदे कह रहे।

जीवन विच जल विच है, थल विच उसका वासा है। जीवन में जल में थल में सब रूपन में चंद्रमा सूरज तारिया के अंदर उसका अक्स है, परछावा है, जोत है। गरीब नवाज पातशाह फरमा

0: रेडियो CIFK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम स्लिप तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हैं कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तो आप जी नु पता ही है, जे नहीं तो वह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अति फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Speak Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

नौ सात संगत तुहाडी जग्यासा तो कुर्बान जाइए, तुहाडे अंदर सुनन समझन दी भुख ते चाहे गुरु की बख्शिश है ते चाहे प्रबंधकां ने तुहानू जो सुनिया दिता है उहदा असर है। हुण असीं इह समझना है कि गुरबाणी दे अर्थ करन लग्गिआं कि पहलियां गल्लां नूं असीं ठीक मन के उत्थे टिक जाणा है कि उहदा ढंग समझना। गुरबाणी का आप तो लैके अंतिकर एक तरीका जो साडी समझ विच आया है, पहले गुरु साहब उन्हां प्रचलित तरीकों का वर्णन करदे जिहड़े आम लोग सचार बनने वास्ते कर रहे, रब दे नेड़े पहुंचन लई कर रहे ने प्रचलित तरीके। अखीर विच फिर गुरु साहब अपनी राय दिंदे। ये तरीका हमेशा ध्यान च रखना, हर शब्द के अंदर हर प्रकरण के अंदर गुरु साहब ने इहो ही ढंग वरते। पहले वह प्रचलित गल करनगे फिर अपनी राय देंगे। हुण जो तुहाडे सामने पौड़ी का पाठ होया है इहदी अखीरली पंक्ति है किव सचियारा होई है किव कूड़ा टुटै पाव। पाव का मतलब है कंध, केड़ी कंध? इटां दी सीमेंट दी नहीं, कूड़ दी कंध। जिस कूड़ दी कंध ने साडे ते परमेश्वर विच दूरी पैदा की उनू तोड़ना है, वो किवें टुटे, वो साडे अंदरों किवें दूर होवे तां जो असी सचियार बन सकीए, असी सच नूं जानण वाले बन सकीए, असी सच दे धारनी बन सकीए। हुण पातशाह कहिंदे ने लोक सचियार बनण वास्ते की कर रहे, बाहरली सूक्ष्मता ते जोर दे रहे, स्नान कर लो, इन्नी वारी कर लो, फलाने तीर्थ ते कर लो, एक तरीका है। दूजा तरीका है चुप करके बैठो, समाधि ला लो, ये दूजा तरीका है। तीजा है पदार्थ इकट्ठे कर लो, पर सियाणपां इकट्ठियां कर लो। ये सारा कुछ महाराज वो गल्लां करदे ने जिहड़ियां आम लोग कर रहे। तो पहली पंक्ति च क्या सोचा सोच ना हो गई, इस बारली सूक्ष्मता दे नाल मन की सूक्ष्मता नहीं, मन विचों होमे की मैल नहीं हट, भावें कोई लख वारी ये बारली पवित्रता कर ले। फिर चुपै चुप ना हो गई, इस बारली चुप दे नाल मन दे विच उठन वाले फुरने चुप नहीं, वो नहीं टिकते, भावें कोई कितनिया ही समाधियां ला ले। चुपै चुप ना हो गई जे लाए रहा निवता, निव कहते हैं सुरती ध्यान बिरती, ला लवे साल साल लाई जाए, पातशाह कहने नाल भी वो कार्य नहीं मुकम्मल होता। फिर भुखियां भुख ना उतरी, विद्वाना ने इसके दो अर्थ शुरू तो किए, एक तो यह है कि भुखे रहना, क्योंकि यह भी एक तरीका साढ़े च प्रचलन जी वर्त रखो, पर महाराज कहने जेड़े माया की तृष्णा के भुखे हैं उन्हों की भुख नहीं उतरती, भावें सारिया पुरिया के पदार्थों की एक पंड बन है। भार शब्द जोड़ा है ये जिम्मेदारी शब्द है, जदों कोई पठे वढ़ के एक पंड बधी जाती उन्होंने भार कहते, कहते भुखियां भुख ना उतरी जे बन्ना, इनू बन्ना बोलना, बन्ना नहीं कहना, नन्ने नूं थोड़ा जा भारा कर, जे बन्ना पुरियां भार, सारिया चौदह पुरियां मनिया गई, सारी सृष्टि नूं ब्रह्मंड कहंदे, उहदे अगों नौ खंड ने, उहदियां अगों चौदह पुरियां ने, कहंदे जे सारिया पुरियां दे पदार्थां दा एक पंड बन ली जाए फिर भी तृष्णालू बंदियां दी तृष्णा नहीं मुकदी। सह सियाणपां लख होए, इहनूं अजीज ने हो है वैसा में ठीक उच्चारण करके तो जे हुआ एदा होड़ा थोड़ा लमका दियो अपने आप ही फिट आ जाए, हो जा बहुत सियाणपा हो जा, एक न चले नाल सचियार बनण विच ओ सियाणपा विचों एक भी कम नहीं हो। पातशाह जी तुसीं सारे तरीके कंडम कर दिते, जिहड़े असीं सुणदे वेखदे आ रहे हां, जिहड़े साडे इर्द गिर्द दे धर्मां वाले लोग कर रहे ने, तुसीं सारिआं ते लकीर फेर दित्ती है, फिर हुण सानूं दस्सो

परम सत्कार योग साध संगत जी, चरणजीत अहूजा, हरभजन मान, गुरसेवक मान अते सिंदरपाल सिंह सिद्धवां वल्लों फतेह प्रवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

मार के मकाउन वाले चले गए। गुरु के सिखा ने गुरमुख प्यारो हमेशा जालम दे जुल्म दा विरोध कीता, वादा कदे किसे ते नहीं कीता। जे गुरु अर्जन दे पादशाह महाराज तत्ते तवी ते बैठे ता फिर सेवे पादशाह ने दो तलवारां बनियां। फिर गुरमुख प्यारियो दिल्ली दे

0: मेरा राखा सब नहीं था, जो तू हर था मेरा रखवाला है, तो फिर मैंने डर किस गल का? तू मेरी मां भी है, तू मेरा बाप भी है, तू मेरा भरा भी है, तू मेरा संबंधी है, सारे मेरे तेरे नाल रिश्ते हैं। मैं तेनू अपना सब कुछ समझ गया, तू ही मेरा हर थान रखवाला है। जब मैं तेनू समर्पित हो गया, तू मेरा हो गया, फिर किस गल का डर? सतगुरु बख्शिश करे असी उस मालिक नू, गुरु नू अपना मन दईए। मनदे नहीं, अपना विश्वास नहीं करते। मेरा भी उही हाल है, तुहाडा भी उही। भरोसा वध जावे मालिक ते गुरु ते, फिर कोई चिंता की लोड़ नहीं। उसनू आखदे हन रजा मननी, दुख मिले सुख मिले उसकी दात समझ के उसने स्वीकार कर। पर चुक दिखेवा आप संत का धनवाद। कल फिर इसी वेले मिल बैठांगे, साहिब की कीर्ति करांगे, मिलजुल के संगतें। सतगुरु बख्शिश करे अज का गया सुने साडे हिरदे वसे। गुरु प्यारे मैं एक बेनती करा, सतगुरु की बाणी का कीर्तन सुनीए, बाणी में पढ़िए, किसी भी रूप में सुनीए जां गाइए जां पढ़िए, किसी भी रूप के। उस तों बाद कुछ समा उस बाणी नूं दोबारा अपने हिरदे दे विच वसाइए। मैं सुन के की आया, मैं पढ़ गया की है, उसका सार अंश की, उस नूं दोबारा अंदर हिरदे दे विच वसाउणा। सौण लग्गिआं जरूर इस गल का ध्यान रखना। गुरु घर विच आए हाँ, बाणी सुनी, गुरु के प्यारियां ने, गुरु के ढाडियां ने, भाई साहब भाई तरलोचन सिंह जी पमद्दी होरां ने गुर इतिहास नाल आप नूं जोड़िया। ये सब कुछ घर जाके सौण वेले एक बारी फिर इस नूं जरूर याद करना कि मैं सुन के की आया। फिर देखना रात दे सुपने बदल जाणगे, रात दी नींद बदल जाएगी, सुख दी नींद आएगी, चिंतावां नूं आपां छड्ड देंगे। ये तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में आएगा ना, जे आपां गुरु नूं ही नहीं याद करांगे, बाणी नूं नहीं याद करांगे तो कुछ होर याद आएगा। मन नूं वेला ना रखा, मन वेला हुंदा ही नहीं, किसी ना किसी पासे कुछ होर लै आउंदा। सो उस नूं काम लाउण वास्ते जो तुसीं सुन के चले हैं, जो पढ़ के जो गा के चले हैं, वो उस मन दे विच वसाउणा। ख्याल दूर हो जाणगे, नाम अंदर वस जाएगा, सुख दी नींद आए। सतगुरु बख्शिश करे जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: ਕੇਰਬੂ ਦੀ ਰੰਗੀਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰੋਤਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ FM ਰੇਡੀਓ CISK 94.3 ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਨ ਸਿੰਘ ਸਵਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375।
2: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Seek Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3872.

हर हर कहावे, वैष्णो नाम कर्म हो जुगता, तोह कुत्ते क्या फल पावे, हंसां विच बैठा बग ना बणी, नित बैठा मच्छी नो तार लावे, जा हंस सभा विचार कर देखन, ता बग्गां नाल जोड़ कदे ना आवे, हंसां हीरा मोती चुगना, बग डड्डा पालन जावे, उडरिया विचारा बगला, मत होए मन लखावे, जित को लाया तित ही लागा, किस दोष दिच्चै जा हर एवें पावै, सतगुर सरवर रतनी परपूरे, जिस प्राप्त सो पावै, सिख हंस सरवर इकट्ठे होए, सतगुर कै हुक्मावै, रतन पदार्थ माणक सरवर परपूरे, खाए खर्च रहे तोट ना आवै, सरवर हंस दूर ना होई, करते इवें पावै, जन नानक जिस दे मस्तक भाग तुर लिखिया, सो सिख गुरु पह आवै, आप तरिया कुटंब सब तारी, सभा त्रिष्ट चढ़ावै, महला पंजवां, पंडित अखाए बहुती राही, कोरण मोठ जनेहा, अंदर मोह नित भरम व्यापिया।

सर्व निरंतर कसम एको राव रहया गुर प्रसादी सच सचो सच लहया दया करहु दयाल अपनी सिफत देहो दर्शन देख निहाल

सो निर्मली हूँ निर्मला, जिसनो तेरी नदर ना लेखा पुछी है, जिसनो तेरी खुशी तिन नौ निध पुंची है, जिसनो तू प्रभ वल तिस क्या मोह शंदगी, जिसनो तेरी मेहर सो तेरी बंदगी, सलोक महला पंजवा, ओ कृपाल स्वामी मेरे संता संग विहावे, तुद हो भुले से जम जम मर दे, तिन कदे ना चुकन हावे महला पंजवा, सतगुर सिमरो अपना, काट अंकट काट काट, हर हर नाम जपन

नानक उदरस नाही पौड़ी, ना तू आवह वस्त बहुत कणावनी, ना तू आवह वस्त वेद पढ़ावनी, ना तू आवह वस्त तीर्थ नहाई है, ना तू आवह वस्त धरती ताई है, ना तू आवह वस्त कितै सियान पै, ना तू आवह वस्त बहुता दान दे, सब को तेरे वस्त अगम अगोचरा, तू भगतां कै वा।

हरक आनंद हुक्मे जपै निरोधर गुरमंत हुक्मे आवन जान रहाई नानक जाको भगती लाई पौड़ी हौ तिस ढाडी कुर्बान जे तेरा सेवदार हौ तिस ढाडी बलिहार जे गावै गुण अपार सो ढाडी धन धन जिस लोड़े निरंकार सो ढाडी भागठ जिस सच्चा द्वार बार ओह ढाडी तुद त्याई कलाने दिन रैनार मंगै अमृत नाम ना आवै कदे हार कपड़ भोजन सच रहंदा लिवै धार सो ढाडी गुणवंत जिसनो प्रभ प्यार सलोक महला पंजवां अमृत बाणी अमियो रस अमृत हर का नाओ मन तन हृदय सिमर हर आठ पहर गुण गाओ उपदेश सुनो तुम गुर सिखो सच्चा एह सुआव जन्म पदार्थ सफल होए मन मह लायो भाव सुख सहज आनंद घना प्रभ जपत्या दुख जाय नानक नाम जपत सुख उपजै दरगाह पाई थाउ महला पंजवां नानक नाम त्याई है गुरपूरा मत दे भाणे जप तप संयम भाणे ही कड ले भाणे जून पवाई है भाणे बख्श करे भाणे दुख सुख भोगी है भाणे कर्म करे भाणे मिट्टी साज कै भाणे जोत तरे भाणे भोग पुगाएंदा भाणे मनह करे भाणे नरक सुरग अवतारे भाणे धरन परे भाणे ही जिस भगती लाए नानक विरले पौड़ी वडियाई सच्चे नाम की हो जीवा सुन सुने पशु प्रेत अज्ञान उधारे एक खणे जिनस रहन तेरा नाउ सदा सद जापी है तृष्णा भुख विकराल नाही तेरे त्रापी है रोग सोग दुख वंजै जिस नाउ मन वसै तिसह परापत लाल जो गुर शब्दी रसै खंड ब्रह्मांड बेअंत उदाहरण हारिया तेरी सोभा तुद सच्चे मेरे प्यारिया सलोक महला पंजवां मित्र प्यारा नानक जी मैं छड गवाया रंग कसुंबै भुली तौ सज्जन की मैं कीम ना पाउंदी हौ तुद बिन अड ना लहंदी महला पंजवां सत वरायण नानक जीओ ससुरावादी जेठो पौ पौलू है हबे भस पुणेंदे वतन जा मैं सज्जन तू है पौड़ी जिस तू बुठा चित तिस दर्द निवारणो जिस तू बुठा चित तिस कदे ना हारनो जिस मिलिया पूरा गुरु सो सर पर तारनो जिसनो लाए सच तिस सच संभालनो जिस आया हाथ निदान सो रहया पालनो जिसनो एको रंग भगत सो जानो।

सचावीया सीलवंत प्रधान हृदय सचावीया अंतर बाहर एक एक रीतावीया मन दर्शन की प्यास चरण दसावीया शोभा बनी सिंगार खसम जा रावीया मिलिया आए संजोग जा तिस पावीया

कारणी दुख को मोहली लाए, संगक संगी बैसती तब पूछे धर्म राय। पौड़ी आपे ही वड परिवार आप एकातिया, अपनी कीमत आप आपे ही जातिया, सब किसे आपे आप आप उपन्या, अपना कीता आप आप वरन्या, धन सो तेरा थान जिथे तू उठा, धन सो तेरे भगत

लाली सतगुरे आखै सच्चा करी सा बात हुवै दरहाली गुरे अंगद दी दोही फिरी सच करतै बंद बहाली नानक काया पलट कर मल तख्त बैठा सहडाली दर सेवे उम्मत खड़ी मस कल्लै होई जंगाली दर दरवेश खसम दै नाए सच्चै बाणी लाली बलवंड खीरी नेक जन जिस बहुती छाओ पतराली लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर क्याली गुरसिखा के मुख उजले मन मुख थीए पराली पए कबूल खसम नाल जा काल मर्दी काली माता खीरी सहो सोए जिन गोए उठाली होरे ओ गंग बहाई है दुनियाई आखै के क्यों नानक ईसर जगन्नाथ पुछहदी वैण बिरक्योन माधाणा पर्वत कर नेत्र बाचत शब्द रिड़क्योन चौदह रत्न निकालियन कर आवागौन चिलक्योन कुदरत ऐह विखालियन जिन ऐवड पिंड तिणक्योन लहणे धरियन छत्र सिर असमान क्याड़ा सिक्योन ज्योत समाणी ज्योत माहि आप आपै सेती मिट्योन सिखा पुतना कोख कै सब उम्मत वेखो जे क्यों जा सदोस ता लहणा टिक्योन फेर वसाया फेर आन सतगुर खाडूर जप तप संजम नाल तुद होर मुच गुरूर लभ बनाहे मानसा ज्यों पानी बूर वरिय है दरगाह गुरु की कुदरती नूर जित सो हाथ ना लभई तू ओहो ठरूर नौ निद नाम निदान है तुद विच भरपूर।

ऐसकारिया नानक तू लहना तू है गुर अमर तू विचारिया गुर डिठा ता मन साधारिया चारे जागे चौं जुगी पंचायण आप।

मेलो गुर का शब्द गुड़ की नरी तृष्णा काम क्रोध मद मत्सर काट काट कस दीन रे कोई है रे संत सहज सुख अंतर जा को जप तप देव दलाली रे एक बूंद भर तन मन देवो जो मद दे कलाली रे रहाउ पवन चतर दस पाठी कीनी ब्रह्म अग्न तन जारी रे मुंदरा मदक सहज धुन लागी सुखमन पोचन हारी रे तीर्थ बरत नेम सुच संयम रव सत गहन देउ रे सुरत प्याल सुधा रस अमृत एहो महारस पेउ रे निचार धार चोवै अत निर्मल एह रस मनुआ रातो रे कह कबीर सगले मद छूछै एह महारस साचो रे गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ पौ पाठी मन धारा सुखमन नारी सहज समानी पीवै पीवन हारा औदू मेरा मन मतवारा उन मद चढ़ा मदन रस चाखिया त्रे भवन भया उजियारा रहाउ दोए पुर जोर रसाई पाठी पियो महारस भारी काम क्रोध दुए किए जलेता छूट गई संसारी प्रगट प्रगास ज्ञान गुर गम्मत सतगुर ते सुध पाई दास कबीर तास मत माता उचक ना कबहू।

ही तू ही हम तो प्रसाद सुखी सद ही रहाऊ तेरे भरोसे मगहर बसियो मेरे तन की तपत बुझाई पहले दर्शन मगहर पायो हुन कांसी बसे आई जैसा मगहर तैसी कांसी हम एक कर जानी हम निर्धन ज्यो इहो धन पाया मरते फूट गुमानी करै गुमान चुभै तिस सूला को काढ़न को नाही अजै सो चोभ को बिलल बलाते

अपने गुर प्रसादी अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले है सारंग पानी राम कबीरा एक भय है कोई ना सके पछानी

0: 600 रन मैं जूझ बिन दागे भग जाई साधु होए सो भगत पछाने हर लए खजाने पाई कोठरे मह कोठरे परम कोठी बीचार गुरदीनी बस्त कबीर को लेव हो बस्त समार कबीर दी संसार को लीनी जिस मस्तक भाग अमृत रस जिन पाया फिर ता का सुहाग।
1: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God.
2: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM

0: सानू निर्मल ज्ञान बख्श, निर्मल बुद्धि बख्श। वो जेड़ा ज्ञान है यही परमेश्वर दा स्वरूप। जिदन ज्ञान सानू आ गया, रब किते लुकया होया नहीं, गया होया नहीं। जिन्हों अरदासा करदे मिल जा कही दा, तो उन्हों जेड़ा गया वो होवे, वो तो जलसल मैयर पूरिया रव्या विच बना। ते सानू पता ही नहीं क्या कौड़ी की है ते हीरा की है, कट्ठे रला के रख दो, जिन्हों पता ही नहीं। मिल गया सी लाल बेचारे कुमार वीर नू, उन्हें गधे दे गल विच पाता सी अज के अखो सतनाम। वो पारख तो बिना, ज्ञान तो बिना फिर पढ़ो जी।
1: ते मुक्त भय सतगुर शब्द,
0: जिन्हां नू गुरु दा शब्द मिल गया, ज्ञान मिल गया, वो जीउंदे ही मुक्त। मर के मुक्ति मंगण दी लोड नहीं।
1: मन गुर परचा पायो,
0: देखो कैसा बचन करदे ने, कौन मुक्त हुंदे ने, किन्हां दी अवस्था है। जिन्हां ने अपने मन नू गुरु दे शब्द विच परचा लिया, परचना शब्द है ते परचा। आपां भी परचदे, बच्चे परच नहीं जांदे खेडां दे विच, परचना लग जाना, इक मिक हो जाना। जिन्हां ने गुरु दे शब्द नाल अपने मन नू परचा लिया, रड़ा ले है, उन्हां दी अवस्था हो जांदी है।
1: गुर रामदास कल चरै तै शब्द निशान बजायो,
0: कल सहार जी हुण उचरदे हन। हे गुरु रामदास महाराज जी, तुसी भी जिस शब्द दा उपर जिक्र आया ना, निशान कहिए धौंसा ढोल नगारा। हे गुरु रामदास महाराज, सतगुर नानक दी गद्दी ने भी इस संसार विच आके शब्द दा ही धौंसा बजाया, शब्द दा ही नगारा बजाया। अपनी पूजा नहीं कराई, कर्म कांड विच नहीं दुनिया नू पाया, उठे लटकन नू नहीं किया, घर बार छड्डन नू नहीं किया, बुत प्रस्ती विच नहीं पाया। हे सतगुर गुरु रामदास जी, उस शब्द दा तुसी नगारा। बाबे तारे चार चक नौ खंड पृथ्वी सच्चा ढोआ ढोआ देना, नगारे दी चोट ते सट मार के कहना के खोजत खोजत तत विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। ये श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने पाई सच दा होका, सच दा नगारा निशान। हे गुरु रामदास महाराज, ओ गुरु नानक देव तो लेके तुसी हुण तक एक शब्द दा ही तौसा बजा रहे हो, शब्द दा ही नगारा बजा रहे हो, शब्द दी चोट नाल ही संसार नू तार रहे हो। सानू भी शब्द दी ही साध संगत आसरा ते ओट बख्शे है। सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ नगारे दी चोट ते कहे साडे सतगुरां ने। शब्द दे लड़ लगीए, इथों ही गुरु दी कृपा नाल शाम दे समय विच अगले सबैये आरंभ होणगे। बड़ी सतगुरां दी संगत दी कृपा है, धन्नवाद है सतगुर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा, जिन्हां ने इस भाग समा आपां नूं बख्शिया है। समय सिर आके लाहे लैण दी कृपालता करनी, बेअंत संगतां वलों शब्द भेट माया हाजिर होई है। सतगुर तुहाडी माया सफली करन ते सुणे होए बचन साडे हिरदे वसण, अगे नूं शुद्ध सेवा करन दा बल बख्शन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।
2: ॐ श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भाव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद, जप आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। बेशुमार यथाह अगणत अतुल, ज्यों बुलावो

परम सत्कार्योग गुरु स्वरूप साध संगत अकाल पुरख श्री वाहिगुरु जी दी अपार कृपा दा सदका अमृत वेले दा निर्मोलक समा प्राप्त होया है। नित नेम अनुसार धन धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने सचखंडी दरबार विच संगतां नूं दर्शन दार बख्श के निहाल निहाल कीता है। अमृतमई बाणी दे जाप पाठ होए हन। सतगुरां दी रहमत दे नाल जो पवित्र बाणी भट्टां दे सवैयां दी विचार नित नेम अनुसार चल रही है। आओ सारियां संगतां अदब सत्कार दे नाल धन धन धन धन सतगुरु श्री गुरु रामदास महाराज जी दे सवैये जो महान विद्वान गुरु घर दे अनन श्रद्धालु पट श्री अमृतसर साहब श्री गुरु अर्जन देव जी दे सन्मुख उचारण कर रहे हन। गुरु कृपा दे नाल उस अगाध बोध बाणी दी विच

सहजियो सतनु वाहिगुरु सहजी हो आया दूरो चल से मैं सत्य तू सरनाए जियो मैं आस्था रखी चित में।

मान्या मन माने लोग ना भतीजे ना भतीजे तो क्या कीजे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख

0: ये बन्ना पुरिया पहार सैस सियाणप लख होए ता इक न चले नाल किवस चारा होइए किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहा जाई हुक्मी होवन जी हुक्म लिवड्याई हुक्मी उत्तों नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा पवाइए हुक्म अंदर सब को हर हुक्म ना कोई नानक हुक्मै जे बुझे ता हमें कहे ना कोई गावे को तान होवे किसे तान गावे को दात जहे निशान गावे को गुण बने अन्या चार गावे को विद्या विष्णु विचार गावे को सद करे तन से गावे को जी लै फिर दे गावे को जापे दिसे दूर गावे को वेखे हाथ राह दूर कथन कसीना आवे टोट कथ कथ कसी कोटी कोट कोट बिंदा दे लेंदे थक पाहे जगा जगंतर साहे साहे हुकुम हुकुम चलाए रा नानक बिकसे विपरवा साचा सह सच नाए पाख्या पव अपार अखे मंगे देख ले दातर दतार फेर के अगे रखिए जित दिसे दरबार मुँह के बोल बोलिए जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाम बड़े आएंगी चार करमी आवे कपड़ा नदरी मोह द्वार नानक वे जानिए सब आपे सुचार सप्या न गए जीतन हुए अपे अपने अंजन सोए जिन से व्यतन पाया मान नानक गावी मुनि निदान गावीए सुनिए और रखिए पाओ दुख पर हासो कर लै जाए गुरमुख दादम गुरमुख वेदम गुरमुख रास माई गौर ईश्वर गुर गौर ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना अखाना ही जाना कथना जाई गुरा एक दे बधाई सावना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई तीर्थ नाव जित बिन पाने के नाही करी जेती से छुपाई वेखा बिन कर्म के मेरे लई मात बिचरकन जवाहर मानक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक दे बजाई सावना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जिद बिचारे आ जा होर दसूनी होए नवा खंडा बच जानिए नाव चले सब कोय चंगा नाव रखाए के जाती जगले जे तस नर नावी ता बात पिछे के कीता है अंदर कीट का दोषी दोष करे नानक नेरे गुण गुण करे गुणवान तैं गुण दे तेहा कोय ना सुजी जे तस गुण कर कोय करे सुनया सिद्ध केसर नाथ सुनया तत्तवल काश सुनया दीप लोप ताल सुनया पूर्ण सत्य काल नानक वचन सुधार गया सुनया दुख पाप का नाश सुनया सत्संग तो होकर सुनया ईश्वर वर्मा इंद्र सुनया मुख सुहान मंद सुनया जोग जोग संतेज सुनया सत्संग नान पलत सदा विवाह सुनया दुख पाप का नाश सुनया सत्संग तो ज्ञान सुनया असर का स्नान सुनया पर पर पाविमान सुनया लागे सह ध्यान नान पलत सदा विवाह सुनया दुख पाप का नाश सुनया सरावना की राह सुनया से पीर पार सतीर पार सुनया आंदे पावे राहा सुनया हस होवे सुधा नानक भगत सदा विवाह सुनया दुख पाप का नाश सुनया मन्ने की गत कही न जाए जे को कह पिछे पुछ पाए कागज कल न लिखार मन्ने का वह कर विचार ऐसा ना दिन दिन होए जे को मन जाने मन को मने सुत होए मन बुद्ध मने सकल पवन की सुध मने ऊँ चोटा न खाए मने जम के साथ न जाए ऐसा ना होए जे को मन जाने मन को मने भाग छाक न पाए मने पस में बरग जाए मने मग न चले पंथ मने कर्म शक्ति से मंद ऐसा ना दिन दिन होए जे को मन जाने मन को मने पावे मोख द्वार मन्ने परवार सदार मन्ने करे तारे जो सिख मन्ने ना कोई ना कुछ ऐसा ना उन दिन दिन होएगी को मन जाने मन कोई पांच परवान पांच प्रधान पंचे पावे दर मन पंचे सोफे दर पंचे को गुरु ज्ञान जे को कहे करे विचार करते कह कर नहीं सुमार सहौल कर्म जय कबू संतोख साफ रखे दिन सूत जे को बुझे होवे सच्यार तोले उपर किता पार ताती होर परे होर सच्चे पातले कमल जोर जी जात के नाम सबना लिखा बुरी कलाम ये लेखा लिख जाने को लेखा लिखा किता होए किता कान साले रूप केती जात जाने कौन कूत किता पसाए को कवाओ तिसे होए लख लरियाओ को जर कम कहो विचार बारा ना जावा एक बार दो चुल पावे खाई चली जाती सदा सलाम तुम सार ਅਸੰਖ ਜਪ ਸੰਖ ਪਾਓ, ਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਪਾਓ, ਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖੇ ਦੁਆਸ, ਅਸੰਖ ਯੁਗ ਮਨ ਰਹੇ ਅਰਦਾਸ, ਅਸੰਖ ਪਾਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਸੰਖ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸੁਰੂ ਅਸੰਖ ਮੋਹ ਲੇਲਾ ਚਾਰ, ਕੁਦਰ ਕਵਨ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰ ਨ ਜਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਈ ਭਲੀ ਜਾਤੀ, ਸਦਾ ਸਲਾਮ ਜਮੀਨਕਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੁਰ ਕੰਤ ਕੋਲ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਕੋਲ, ਅਸੰਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰ ਜਾਏ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਰੱਚਿਆ ਕਮਾਏ, ਅਸੰਖ ਪੱਕੀ ਪਾਇ ਕਰ ਜਾਏ, ਅਸੰਖ ਬੁੜਿਆ ਕੂੜੇ ਸਰਾ ਹੈ, ਅਸੰਖ ਬੁੜੇ ਸੰਭਾਲ ਪੱਖ ਖਾਏ, ਅਸੰਖ ਨੰਦਕ ਸਿਰਫ ਕਰੇ ਭਾਰ, ਨਾਨਕ ਨੀਚੇ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਦ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਹਿ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿੰਦਕਾਰ, ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿੰਕਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੂਰ ਕੰਦੂਰ, ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਏ ਜੇ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਰੱਚਿਆ ਕਮਾਏ, ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਏ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆ ਕੂੜੇ ਸਰਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਮਲੇਲ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਪੱਖ ਖਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦ ਸਰੇ ਸਿਰ ਕਰੇ ਭਾਰ, ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿੰਕਾਰ, ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਸੰਖ ਸਾਓ, ਗਮ ਗਮ ਸੰਖ ਲੋ, ਅਸੰਖ ਹੈ ਸਿਰ ਪਾਰ ਹੋਏ, ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ ਅੱਖਰੀ ਸੋਲਾ, ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗਾਓ, ਅੱਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਵਾਣਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸਮਝੋ ਬਖਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਿਰ ਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ ਫਰਮਾਏ ਤੁਮ ਤੁਮ ਪਾਏ, ਜਿੱਤਾ ਕੀਤਾ ਚੇਤਾ ਨਾ, ਜੋ ਨਾਮੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋ ਥਾਓ, ਕੁਦਰ ਕਮਨ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੂੰ ਪਾਏ ਸਾਹਿਬ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮ ਨਿੰਕਾਰ, ਪਲੀਏ ਹੱਥ ਪੈ ਪੈਂਦੇ ਪਾਣੀ ਚੋਚੇ ਤਰੀਫੇ, ਬੂਥ ਬਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬਣ ਲਈਏ, ਉਹ ਧੋਏ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕਹਿ ਸੰਗ ਧੋਪੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰੰਗ, ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਅੱਖਰ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਕਰ ਕਰ ਨਾ ਲਿਖੜੇ ਜਾ, ਆਪੇ ਵੀ ਜਾਤੇ ਹੀ ਸਾਫ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਵੀ ਆਵੋ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਤਪ ਲੈ ਲਤ ਨਾਨ ਜੀ ਕੋ ਪਵੇ ਤਿਲਕਾ ਮਾਨ, ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਪਾਓ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮੰਨਾਓ, ਸਾਬਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ, ਜਿਨੂੰ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਾਹ ਸਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰਵਾਓ, ਸਭ ਸ਼ਾਂਤ ਰਾਵਾਂ ਚਾਓ, ਕਵਣ ਸੁਬੇ ਲਗਾ ਸਾਨ, ਕਵਣ ਸਿੱਤ ਕਵਣ ਵਾਰ, ਕਵਣ ਸਿੱਤ ਤੀ ਮਹਾਂ, ਕਵਣ ਜਿੱਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰ, ਵੇਲਣਾ ਪਾਈਆਂ ਪੜਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪ੍ਰਾਣ, ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਰਨੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕਰਾਣ, ਸਿੱਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ, ਰੁੱਤ ਮਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋ ਸਾਡੇ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਸਲਾਹੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਨਾਨਕ ਅੱਖ ਸਭ ਕੋ ਅੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ, ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੇ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋ ਹੈ, ਪਾਤਾਲਾ ਪਤਾ ਲੱਖ ਗਾਸਾਂ ਗਾਸ, ਹੋਰ ਕੋਟ ਪਾਤ ਕਹਿਣਕ ਬਾਤ, ਸਹਿਸ ਅਠਾਰਾਂ ਕਹਿਣਕ ਦੇਵਾ ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਤਾਤ, ਦੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਸੀਏ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪ, ਸਲਾਹੀ ਸਲਾਹੇ ਇੱਤੀ ਸਤ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਪ ਵੇ ਸੁੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣੀਏ, ਸੁੰਦ ਸਤ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਹਰਾ ਸਿੱਖੀ ਹਲਕਾ ਨੀ, ਕਿਹੜੀ ਤਿਲ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਜਿੱਤ ਸਿਮਰ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਅੰਤਰਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣਾ, ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨੇ ਦੇਣਾ, ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੇ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ, ਅੰਤਰ ਜਾਪੇ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤਰ ਜਾਪੇ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਲਾਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਅੰਤਰ ਜਾਣੀ ਹੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ, ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਓ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾ ਹੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਸੋਏ, ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸੋਏ, ਜੇ ਵੱਡਿਆ ਆਪ ਜਾਣੇ ਆਪ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਦੇਵੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਕਿਰਨ ਗਵਾਏ, ਕਿਤੇ ਮੰਗੇ ਜੋ ਪਾਰ, ਕਿਤੇ ਮੰਤਰ ਹੀ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਤੇ ਖਪਰ ਤੇ ਵਿਕਾਰ, ਕਿਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ, ਕਿਤੇ ਮੂਰਖ ਆਹੀ ਖਾਹੇ, ਕਿਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ, ਕਿਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾ, ਇਹ ਪੇਦਾ ਤੇਰੀ ਵਿਚਾਰ, ਬੰਦ ਖਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ, ਜੇ ਕੋ ਖਾ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਮੁਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾੜੇ ਆਪੇ ਦੇ ਅੱਖੇ, ਸੇ ਪੇ ਕਹੀ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹਾ, ਨਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੁੱਲ ਗੁਣ ਵਪਾਰ, ਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਏ ਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਮੁੱਲ ਆਵੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਮੁੱਲ ਅਸਮਾਹੇ, ਮੁੱਲ ਧੜ ਮੁੱਲ ਜੀਵਨ, ਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਮੁੱਲ ਕਰ ਮੁੱਲ ਫਰਮਾਨ, ਮੁੱਲੋ ਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹਿ ਲੈ ਲਾਏ, ਆਖੇ ਵੇਦ ਪਾਠ ਬਣਾਉਣ, ਆਖੇ ਬੜੇ ਕਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਆਖੇ ਮਨਵੇਂ ਆਖੇ ਜਾਂਦਾ, ਆਖੇ ਗੋਪੀ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਆਖੇ ਈਸ਼ਰ ਆਖੇ ਸਿੱਧ, ਆਖੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬੁੱਧ, ਆਖੇ ਗਿਆਨਮ ਦੇਵ, ਆਖੇ ਦੇਵ, ਆਖੇ ਸੁਰ ਨਾਰ ਮੁੰਜਨ ਸੇ, ਕਿਤੇ ਆਖੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉੱਠ ਉੱਠ ਜਾਹੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਦਾਸ ਨਾ ਸਕੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇਵਟ ਭਾਵੇ ਤੇਵਟ ਹੋਏ, ਨਾਨਕੀ ਵਾਲੇ ਸਾਚਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਆਖੇ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ ਸਿਰ ਗਵਾਰਾਂ ਗਵਾਰ, ਸੋਲਰ ਕਿਹਾ ਸੋਕਰ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਤ ਵਹਿ ਸਰਮ ਸੁਮਾ ਲੈਣ, ਵਾਜੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੰਖਾਂ, ਕਿਤੇ ਬਾਵਨ ਹਾਰੇ, ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਪਰੀ ਸਿੰਘ ਕਹੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੇ, गाँव में तुहनो कौन पानी का संतर गावे ना धर्म द्वारे गाँव में चित गुप्त लिख जाने लिख धर्म विचारे गाँव में ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन सदा सवारे गावे इंद्र दर्शन बैठे देवते अंदर नाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर कराए गावन पंडित पढ़न रखी सुर रखी सर जुग जुग विद्या नाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पाले गाव रतन पाए तेरे अक्षर चीर्थ नाले गावे जोत महासुरा गावे खानी चाहे गावे खंड मंडल वरमुंडा कर कर रखी तारे तेई तुझनू गावे जो तुझ पावन रते तेरे पात्र साले होर किते गावन फिर मैं चितना गावन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई है पी होसी जाए रजासी सचना जिंदर चाई रंगी रंगी पाती जैसा जिनसी माया जिन्हें पाई कर कर दे देखे कीता अपना जित सी बड़ियाई जित भावे सोई जासी हुक्म न करना जाई सो पात शाह पात साहेब नानक रन जाई मुंडा संतोष संपत्ति होली ध्यान की करे पूरी हिंता काल को आरी काया जो करुणा पति आई पंथी सगल मती मान जीते जाते जग जीत आदेश से आदेश आद अनिल अनाद नाथ जिजो को येश पुष्प ज्ञान जाय भंडारण कटकट वाली नाग आप नाथ नाथी सब जहाँ की रिद से अवरा साग सो संयोग वियोग दो का पिलावे लिखे आवें पाप आदेश से आदेश आद अनिल अनाद नाथ जिजो को येश का माई जी को चिंते ले परवार एक संसारी एक भंडारी कलाए दीवान जिन तुझ पावे तेने चलावे जीव होए फरमान ओ वेखे उन्हां नजर आवे बेटा हे विराम आदेश से देश आद अनिल अनाद नाथ जिजो को येश आठ लोय लोय भंडार जो किस पाया सो एक बार कर कर वेखे सिद्धि नार नानक साचे सच्चे की साची कार देश से देश आद अनिल अनाद नाथ जिजो को येश एक दो जीवो लाख हो है लख हो मैं लखवीर लख लख गे लखिए एक नाम जगदीश एह रहा पत पौड़ियाँ चढ़िए होए अगीश सुन गला आकाश की टाई रीस नानक मिली भाई ए कूड़ी कूड़े ठीस आखन जोर चुपे नह जोर जोर ना मंगना देह ना जोर जोर ना जीवन मर नह जोर जोर ना राज मार मान शोर जोर ना सोती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुट संसार जिस रात जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीत न गोए राती रुति छठी बार पवन पानी अग्नि प्रताप तिसु धरती रखी धर्मसार जिस विच धरती थाप रखी धर्मसार तिस विच जी जीव तेरा तिनके नाम नेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार जिथे सोन पंचा नदरी करम पवे निशान कर चपकाई उत्थे पाए नानक गया जा पै जाए धर्म खंड गाय हो धर्म ज्ञान खंड का को कर्म केते पवन पानी है संतर केते काम हेत केते ब्रह्मे कार्य करिए रूपना के बेस केतने कर्म पूर्ण हेर केते केते तूप देश केते निचल सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रत्न सुन दे केतियाँ हानि केतियाँ वाणी केते पात मेल केतियाँ सोती सेव केते नाम के अंत नंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाम विरोध कोट आनंद शर्म खंड की बाणी गुरु रूप तिथे कार्त कड़ियाँ बहुत ताकिया गल कथियां न जाए जे को कह पिछे पुछताए तिथे कड़िए सुत मत मन बुद्ध तिथे कड़िए सुरा सुधा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे हो न कोई होर तिथे जो नावाई सूर जिन में राम रहा भरपूर तिथे सीतो सीता में ममा है ताँ के रूप न कथने जाए ना ओह मरे न ठगे जाए जिनके राम से मन माहे तिथे पातुसे के लोग करे आनंद सच्चा मन सत खंड वस्तु निकार करता वेखे नजर निहाल तिथे खंड मंड भंड जे को कसिता प्रणाम तिथे लो लो आकार जिव जिव हुक्म चले चलकार देखे वैसे कर विचार नानक सना करा सार जट पहारा पी वैसे यार अहरन मत वे वैसे यार पाओ खला तपताओ भांडा पाओ तो अमृत ढाल करिए सच शब्द सची टकसाल जिनको निर कर संकार नानक नर निहाल श्लोक पावन गुरु पाणी पिता माता तत महत जिस रात दो गाई गया खेले सगल जग चंगे आईया बुरे आईया बाचे तर हजूर ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਨਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਾਇਮ ਸਤਿ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇਮ ਖੋਜਲੇ ਚੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਆਪਤ ਹੈ ਤੇਮ ਕੋ ਪਾਸੇ ਦਸਨੀ ਛਪੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਚਿਹਰਾ ਵਰ ਜਾ ਕਰ ਪਾਤ ਮਹਿਨ ਜਰੂਰ ਪਠੰਗ ਰੇ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਿਹੇ ਚੱਲ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਪਾਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ ਤੋਂ ਕਿਹਜੇ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਨ ਸਾਸ ਹਨ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਨੀਤ ਸੁਰ ਨਾਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਮੰਤਰਾਣ ਕਹਿਤ ਸਾਵ ਸਰਵ ਨਾਮ ਕਥੇ ਕਵਰ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਨਤ ਸਮਤ ਪ੍ਰਿਯੰਗ ਪ੍ਰਿਆ ਤੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਕਾਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਿਰਪਾਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਕਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਭੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਥਾਵੇਂ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰਮ ਨਮਸਤੰਗ ਧਰਮ ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਧਾਮ ਨਮਸਤੰਗ ਦੀਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਦੀਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਵਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਲਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨੀਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਲਾਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸਿਰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਲਾਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਭੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਉਦਾਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪਾਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੇਵਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨੇਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਮੇਰ ਕਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਮੇਰ ਪਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕ ਨਿਰਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਵਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਵਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਲੋਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੋਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਤਾਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਦਾ ਥਾਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਤਰਵਾਣੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਦਾਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਆਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਆਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਤਵਰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਸਰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪਰ ਭੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੋਜੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰੰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਮੰਕ ਗਮੇ ਨਮਸਤ ਤਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਗਿਲਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਵਾਜਵੇ ਨਮਸਤ ਅਜਵੇ ਅਦੇ ਸੰਗ ਦੇਸੇ ਨੇ ਸੰਗ ਨਮਸ ਅਦੇ ਸੰਗ ਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਧਾਵੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਧਾਵੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਜਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰ ਥਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰ ਥਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰ ਪਾਲੇ ਨਮਸਤ ਦੇਵੇ ਨਮਸਤੰਗ ਦੇਵੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਾਨਵੇਂ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਬਨਵੇਂ ਨਮੋ ਸਰ ਭਾਉਣੇ ਗਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰ ਭਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰ ਰੰਗੇ ਨਮੋ ਸਰ ਭੰਗੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮਸਤਸ ਦੇਵਾਲੇ ਨਮੋ ਨਮਸਤੰਗ ਅਵਰਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਵਰਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਗਿਰਾਰੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰਤਾਰੰਗ ਨਮੋ ਸਰ ਭੰਗੇ ਨਮੋ ਸਤ ਅਵੰਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸਾਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਵਾਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਹੀਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰੀਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਮਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਹੰਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪ੍ਰਗਾਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਹਾਗੇ ਨਮੋ ਸਰ ਸੋਖ ਨਮੋ ਸਰ ਬੋਖ ਨਮੋ ਸਰ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਰ ਹਾਤਾ ਨਮੋ ਜੋ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਪੋ ਪੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰ ਗਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰ ਪਾਲੇ ਚਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆ ਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਅਜੂ ਹੈ ਭੂ ਹੈ ਲੇਖ ਹੈ ਦੇਖ ਹੈ ਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਮ ਹੈ ਅਜੇ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਜੀਤ ਹੈ ਗੀਤ ਹੈ ਅਨਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਤਵਰਗ ਹੈ ਸਰਗ ਹੈ ਅਨੀਲ ਹੈ ਨਾਲ ਹੈ ਜੇ ਹੈ ਜਾਗ ਹੈ ਜਨਮ ਹੈ ਅਵਰਮ ਹੈ ਅਪੂਤ ਹੈ ਪਰਮ ਹੈ ਅਜਾਗੰਜ ਹੈ ਭੰਜ ਹੈ ਚੂਲ ਹੈ ਚੰਦ ਹੈ ਨੀਜ ਹੈ ਰਫੀਕ ਹੈ ਕੰਧ ਹੈ ਵੰਧ ਹੈ ਨਿਰਬੂਧ ਹੈ ਸੂਦ ਹੈ ਅਕਾਲ ਹੈ ਅਜਾਲ ਹੈ ਅਲਾਹ ਹੈ ਅਜਾ ਹੈ ਅਨੰਤ ਹੈ ਮਹੰਤ ਹੈ ਅਲੀਕ ਹੈ ਨਿਰਸਰੀਕ ਹੈ ਨਿਰਲੰਬ ਹੈ ਸਮ ਹੈ ਗਮ ਹੈ ਜਮ ਹੈ ਪੂਤ ਹੈ ਸ਼ੂਤ ਹੈ ਅਲੋਕ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਹੈ ਅਕਰਮ ਹੈ ਪਰਮ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਪੀਤ ਹੈ ਵਾਹ ਹੈ ਗਾਹ ਹੈ ਇਮਾਂ ਅਮਾਨ ਹੈ ਨਿਦਾਨ ਹੈ ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਰੇਕ ਹੈ ਬਿਯੰਗ ਪਰਿਆ ਤੇਸ਼ਨ ਨਮੋ ਸਰ ਮਾਨੇ ਸਵਾਸਤੀ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਭੇਖੀ ਦੇਵੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਜੈ ਪਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰ ਗਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰ ਭਾਉਣੇ ਰੰਗੀ ਨਾਸੇ ਸੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ ਨਮੋ ਪੰਥਾਨੇ ਨਮੋ ਮਨਮਾਨੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ਨਮੋ ਤਨ ਧਾਨੇ ਨਮੋ ਨਿਰਤ ਨਿਰਤੈ ਨਮੋ ਦਾਦ ਨਾਦੇ ਨਮੋ ਪਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਵਗ ਵਾਦੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਸਮਸਤੀ ਸਰੂਪੇ ਪ੍ਰਬੰਗੀ ਪ੍ਰਭਾਥ ਸਮਸਤੀ ਬੂਟੇ ਕਲੰਕ ਬਿਨਾਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਜੇਸ਼ ਬ੍ਰੰਗ ਪਰਮ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜਗੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਸਦੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਜਗੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਬ੍ਰਿਦੇ ਨਮੋ ਸ਼ਕਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਮੋ ਅਸਤ੍ਰਮਾਣੇ ਨਮੋ ਪਰਗਿਆਤਾ ਨਮੋ ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਅਪੇਖੀ ਪਰਮੀ ਭੋਗੀ ਭੁਗਤੇ ਨਮੋ ਜੋ ਜਗੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਜੁਗੇ ਜੁਗਤੇ ਨਮੋ ਨਿਤ ਨਰਾਣੇ ਕਰਮ ਕੁਰੂਮ ਕਰਮੇ ਨਮੋ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤੇ ਦੇਵੇ ਸੁਧਾਰਮੇ ਨਮੋ ਰੋਗ ਹਤ ਨਮੋ ਰਾਗ ਰੂਪੇ नमो शाशाह नमो भूपित नमो दान दाने नमो अनुमान नमो रोग रोगे नमस्तु सनाने नमो मंत्र मंत्रिंग नमो यंत्र यंत्रिंग नमो सृष्टि नमो तंत्र तंत्रिंग सदा सच्चिदानंद सर्वप्रणाशी के अरूपे समासन वासी सदा शुद्ध शुद्ध वृद्ध करता अदो उर्द अर्धम उपाग उहर्ता परम परम प्रेसवरं प्रोष पालन सदा सर्ग शुद्ध जाता जालं चेदी के दीनाम काम समस्त प्राजी समस्त कामं चेरा जो चाचरी शांत जले थले हैं पीछे पै हैं प्रभु हैं जो हैं देश हैं पेश हैं यंग परे आके शांत वाजे वाजे नंगी हरे ते नमो सर्माने समस्त निवाने नमस्तु नाथे नमस्तु परमाथे नमस्तु गंजे नमस्तु पंजे नमस्तु काले नमस्तु पाले नमो सा देशे नमो सा देशे नमो राजे राजे नमो सा साहे नमो सा साहे नमो साज साजे नमो सा साहे नमो मामाहे नमो गीतीते नमो त्रिकीते नमो रोख रोखे नमो सुख सुखे नमो सर्वोगे नमो सर्वोगे नमो सब जीतिंग नमो सब जीतिंग नमो सब कर ज्ञानी नमो परमतानी नमो सर्व मंत्रिंग नमो सब जंत्रिंग नमो सर्व दृसिंग नमो सर्व कृषिंग नमो सर्व रंगे तो पंगे नंगे नमो जीव जीवन नमो बिजे अखिजे अखिजे स्वास्थल प्रसिजे कृपालन स्वरूप कर्म प्रनासी सदा सर्वदा ऋषि निवासी च प्रसन्न तव प्रसाद अमृत कर्म अमृत धरने अखल जोगे चल भोगे चल राजे चल साजे खलक धर्म लख करम शर्म दाता शर्म जाता शर्म पाने शर्म जाने शर्म प्राणन शर्म तरण शर्म पुता शर्म पिता शर्म देव शर्म भेव शर्म काले शर्म पाले रिवाज शर्म दत्ता प्रसाद आदि रूपन आदमूर्त जौन पुरुष अपार शर्मान शर्मान देव अपेवादार सर्व पालक सर्व कलक सर्व कोपन काल जित जित विराजी आप धूप धूप रसाल नाम साम न जात न कर रूप रंग नारे आल पुरुष धार मूर्ख जोन आज शेख देश आर ना पेस जाकर रूप रेख नाराज जत तत सब साहू हो फैले अनुराग नाम काम हीन पेखत ताहू नह जाए सर्व मन सत्र मन सह मानता है एक मूर्त नेक लखन की बने खेल खेल अखेर खेल अंत को हर एक दे पे न जानी जह दे रूप रंग न जात पात सो जानी कह जेग तात मार न जात जा कर जन्मन भी चक्कर बक्कर फिरे चक्कर चक्कर चक मन ही पती न लोक चौदह के बिगड़े जग जापनी जह जाप देव नाग मूर्त थप जय सब जय थाप परम रूप नीति मृत परम प्रभु पार सर्व विश्व रचियो सिंहंगण पंजार कालहीन कलासन युक्त काल पुरुष देश धर्म धाम सो भरम रहता भूत अलख पेश अंग राग न रंग जाके जात पात ना नाम गर्भन मुक्त दाय काम ए आप मूर्त अमीक अन उस्त एक मूर्त एक पुरुष अवधूत गर्भगण्य फटे पंजन आदि रूप अशूत अंगहीन भंग अनात्म एक पुरुष अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को पुरुष पार सर्वगंता सर्वहंता सर्व पे अनपेख सर्व शास्त्र न जानी जय रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नेत भाषण नित कोष शस्त्र न आसुई आई बोचित मद प्रशांत त्वय प्रसाद निदार निम अपार आसन भंग उपमानंद अनुप अनुपव प्रकाश निस्न नाथ राजन वाषा हंसा राजन पारन पहान देवन देव महान इंद्रन इंद्र बालन बाल रंकन रंक कालन काल अनुपव अंग आबा पंग गति पार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम नितन काम अत दूत प्रचंड मृतगत खंड आलस्य कर्म दृष्टि कर्म सरा पर नंड अंड अनुबंध चाचर शांत प्रसाद गोविंद कुंदे जारे पारे हरिओम करियम नामे कामे पिजांग परे आचे शांत चित्त चक्र करता चित्त चक्र हरता चित्त चक्र दाने चित्त चक्र दाने चित्त चक्र वक्ती चित्त चक्र पाती चित्त चक्र पाले चित्त चक्र काले चित्त चक्र वासे चित्त चक्र वासे चक्कर चक्कर मान्या चक्कर चक्कर दान्या चाचरी छंद
1: ना सतरे न मित्रे न परत न पितरे न कर्म न काहे जन जाहे न चित्रे न मित्रे परे है पुत्र पर तीसरे अधीचे जैसे कैसे भगवते शांत प्रसाद कथ के शिज देसे के बुज देसे के गन करने के पंच परमे के अपिजलोके के विपशोके के अवधूत वरने के विभूत करने के राजन प्रवाह के तारनु तुझा है के शोक बनने के सर्व सर्व अपरने के जलतन कृति हैं के क्षत्रन क्षत्रि हैं के ब्राह्मण स्वरूप ब्रह्मण स्वरूप के अनुपव अनुपे के आद अजीव है के आप हैं चतुर्ण भूमि के एक भूमि के रोजी रजा के रहीम में रहा के पाक बेअब हैं के गैब लगैब हैं के अफुल अफुल गना है के शाहन शाह हैं के कारण करण है रोजी रहे हैं के राज रहीम है के कर्मं करीम हैं के सर्वं कली हैं से सर्वं गली हैं ਕਿਸਵਤ ਮਾਨਿਆ ਕਿਸਵਤ ਜਾਣਿਆ ਕਿਸਵਤ ਗਾਉਣੇ ਕਿਸਵਤ ਪਾਉਣੇ ਕਿਸਵਤ ਜੇਸੇ ਕਿਸਵਤ ਪੇਸੇ ਕਿਸਵਤ ਰਾਜੇ ਕਿਸਵਤ ਸਾਜੇ ਕਿਸਵਤ ਦੀਨੇ ਕਿਸਵਤ ਲੀਨੇ ਕਿਸਵਤ ਜਾਹੋ ਕਿਸਵਤ ਪਾਹੋ ਕਿਸਵਤ ਜੇਸੇ ਕਿਸਵਤ ਪੇਸੇ ਕਿਸਵਤ ਕਾਲੇ ਕਿਸਵਤ ਪਾਲੇ ਕਿਸਵਤ ਹੰਤਾ ਕਿਸਵਤ ਘੰਤਾ ਕਿਸਵਤ ਤੀਖੀ ਕਿਸਵਤ ਤੀਖੀ ਕਿਸਵਤ ਕਾਜੇ ਕਿਸਵਤ ਰਾਜੇ ਕਿਸਵਤ ਸੋਖੇ ਕਿਸਵਤ ਭੋਖੇ ਕਿਸ ਸਰਵਤ ਪ੍ਰਾਣੇ के सर्वत्र प्राण के सर्व दिश के सर्वत्र दिशे केशवत्र दिशे केशवत्र मान्या दैवम प्रताप्या किसवत जापे किसवत थापे किसवत पाने किसवत माने किसवत इंद्रे किसवत चंद्रे के सर्वं कलीमे के परम प्रहिमे के आकल अलामे के साहिब कलामे के सुन बजून है तुम बजून है हमेश नामे श्री कुटुम दामे गनी मुख किस गरीब परस्त बलंदन मकाने जमीन वीमान कमीज तमामे अरवी उन गाने और हरी फुल अजीम में अर्जाय कर अनेक उत्तराय ग्रहण के ग्रहण पर हैं अजी अनुवाद हैं गनी मुल्क राज हैं नृत्य स्वरूप हैं प्रमुख स्वरूप हैं प्रभुत्व प्रवाह हैं श्री सजा हैं स्वयं स्वरूप हैं प्रदी रूप हैं स्वस्थ उपराज हैं सदा सदसाज हैं समस्त सलाम है सैबल का है निवास रूप है राजमूप है वंगाग रूप है नाज स्वरूप अनंगी नाम है तपंजित काम है सर्वार्ग सर्वादे अगंजे गाजे सुपंग सुवंग सर्पागे सुसव्या अनुरागे कर पवित स्वरूप है शुद्ध है स्वरूप है के नरक प्रनास है प्रसिद्ध प्रवास है निरुक्त प्रवाह है सैवन सदा है विभुक्त स्वरूप है विजुक्त अनुप है अनुक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक्त अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है क्या कृष्ण पंग है नंद है तेज है लेह है परम है कर्म है नाद है जिगाद है अजय है वे हैं भू हैं अभूत है अतूत है अनाथ है उदास है तंध है बंध है अपक्त है प्रकथ है अनाथ है प्रकाश है निचिंत है सुनंत है लिख है दिख है लेख है पेख है अड़ा है गाँ है असंभ है गम है नीर है नाद है अनित्य है सुनित है जात है अजाद है चर पुचान तत्पश्चात सर्वहंता सर्वंता सर्वं कर्ता सर्वं ज्ञाता सर्वघर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राण सर्वं तरण सर्वं दूता सर्वं कर्म सर्वं तरण सर्वजुक्ता सर्वं मुक्ता सर्व शांता प्रसाद नमो नक्र से सर्वं प्रकाश से अरंगम स्वरूपे अपंगम स्वरूपे परमाथम परमाथे सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्वाद विभूते न पंजी स्वरूप सर्वंगी नृत्य न पोतरे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न तात न माते न जाति न बाते न सत्य न शरीक हैं हम तो अमीक हैं सदैव प्रवाह हैं अजय हैं अजय हैं अजय हैं अजा हैं भागवती शंदत पश्चात के यार आज हूर हैं के हाजिर हजूर हैं हम वेशुल सलाम हैं स्वसुल कलाम हैं के साहिब दिमाग हैं के हुसन चिराग हैं के कामल करीम हैं के राज कर हिंद हैं के रोजी भिंद हैं के राज कर हिंद हैं प्रीमल कुमार हैं के हुसन जमाल हैं गनी मुल खराज हैं गरीब निवास हैं हरीब उलफन हैं हासिल फन हैं कलंक प्रनाश हैं स्वस्थ निवास हैं गंजल गनी हैं जाय कर हिम हैं समस्त जवा हैं के साहिब क्रिया हैं के नरकम प्रनाश हैं के वस्तु निवास हैं के सौरव गवन हैं हमेशन हैं तमाम कमीज हैं स्वस्थ अजीज हैं परम परम ईस हैं स्वस्थल अजीश हैं जैसल अलेख हैं हम मेसर पेश हैं अजमीर जुमा हैं अमित हैं कई कुमार हैं कई कुमार हैं
0: कि अचलंग प्रकाश हैं कि हम तो सुभाष हैं कि अज भी स्वरूप हैं कि हम तो भूत हैं कि हम तो उपसा हैं कि आत्म प्रवाण हैं कि अचलंग नंग हैं कि हम तो भंग हैं मत प्रसन्न तो प्रसाद मन मन प्रणाम गुणगन बताम हर हर गंज हर नर पंज अनगन प्रणाम मन मन सलाम हर नर खंड वर नर अमंड अनुभव अनास मन मन प्रकाश गुणगन नाम जल थल मदान अंश ज अंग आसन भंग उपमा पार कथन सुधार जल थल अमंड जिस विस पंड जल थल महंत जिस विस बेअंत अनुभव नास तृत तारत रास आजन वह एक सिदाह ओंकार आल कथनी अनाग कल कल खल खंड ख्या गुरबद काल कर कर प्रणाम चित चर नाम अंशित गात आतिजन बात अनचंद गात अनचंद बात अनुट भंडार अंठ ठोपार अटीठ कर्म तटीठ कर्म अनुभ्रंत नंत दात महंत हर गुरुप्रसाद कुरनाले हैं कल कर कल्य हैं कलखंड हैं मैं मंदिर हैं जगतेश्वर हैं परमेश्वर हैं कल कारण हैं सर्वदा ओ हरण हैं त्रिक के प्रण हैं जग के करण हैं मन मान्य हैं जग जान्य हैं सर्व पर हैं सर्व कर हैं सर्व पश्च हैं सर्व नश्य हैं करना कर हैं समृद्ध हैं सर्वोच्च हैं जगतेश्वर हैं ब्रह्मंडस हैं कलखंडस हैं पत्ते पर हैं करना कर हैं अजप्पा जप हैं थप्पा थप हैं अकृत अकृत हैं अमृत अमृत हैं अमृत अमृत हैं करना कृत हैं अकृत अकृत हैं करना कृत हैं पृथ्वी हैं परमेश्वर हैं अकृत अकृत हैं मित्र मित्र हैं अजवा कृत हैं अमृत अमृत हैं नर नायक हैं करकायक हैं वृषम्बर हैं करवाले हैं मृत नायक हैं सर्पायक हैं पपंजन हैं अर्गंजन हैं रक्तापन हैं जप जापन हैं अकलंकृत हैं सर्वकृत हैं कर्ता कर हैं हर्ता हर हैं परमात्म हैं सर्वात्म हैं आत्मवास हैं जस के जस हैं यंग प्रयासे छंद नमो सूर्य नमो चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बिंद्र इंद्रे नमो बिजबीजे नमो राज संग काम संग शांत रूपे नमो परम तंत्र अतंत स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्र नमो तंत्रे नमो जुज जुजे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पोज पोजे नमो पंचाने नमो कुल कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्र अनाद भूते कलंक रूपे अलंक अलंके नमो आशासे नमो भंगे भंगी स्वरूपे नंगी नाम भंगी प्रकाले नंगी कामे एक श्री छंद अजय अले अपेवे आऊ अजू अनासुकाश अकान अगांज पांज लख पक काल दयाल लेखे का अनाम काम अगा डा अनासे प्रमाशे जन्नी अमन न राज नरंगे न रूप न रेखे कर्म भरमन अगंजे लेखे प्रियंक प्रया ते छंद नमस्तल परनाशे समस्तल परनाशे अखंजन अनामे समस्त नवासे निकाम विभूति समस्त स्वरूपे कुकर्म कुकर्म प्रनासे सदाम विभूते सदा सत्कर्म संतन प्रनासे सुकरीम करिंदा समस्त नवासे यजाय विभूते विजाय जिनी में हरिम करिम करिम रहिम में चत्त चक्रवर्ती चत्त चक्रभूते स्वयं स्वंग सर्वदा सर्वदूते दुकालम प्रनासे दे आलम स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगम पुत्र दो कालम पुनासी दे आलम स्वरूप सदा अंग संगे अभंगम पुत्र एक ओंकार सतगुरु प्रसाद वापस सही पास दर्शन सरावन शुद्ध समूह सदान के देश सुर का जो जति के सूर सरावन शुद्ध सदायक संत समूह ने एक मति के सारे ही देश को देख रहे कोई गुना देखे तो मन प्राण पति के श्री भगवान की पाई कृपा हूँ तो एक करती भी नहीं करती के मातंग तंग जरे यार संग अनूप तंग संग से अरे कोर कतरंग क्रंग से कूदत कौन के कौन को जाते नवारे पारी की आन के भूप पली विद न्याव शीश न जात बिचारे एक ते पैतु कहाँ पैतु पत अंत को नाम नहीं पाए पधारे जीत फिरे सब देश स्थान को बाद ढोल मृदंग नजारे गूज गुड़ ज्ञान के सुंदर
1: ਹਿਸਤਰੀ ਹੈ ਰਾਗ ਹਜ਼ਾਰੇ ਭੂਤ ਵੇਖ ਭਾਨ ਕੇ ਭੂਤ ਕੌਣ ਗਾਇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਟੁਕਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਅੰਤ ਕੋ ਅੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਸੁਜਾਰੇ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਦਇਆਤਮ ਦਾਨ ਸੁਸਨੇਮ ਅਨੇਕ ਸਿੱਖ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣਕ ਦੇਵ ਕਦਾਮ ਜੀਨ ਜਵਾਨ ਸਵਾਨਕ ਦੇਖੇ ਪੌਣ ਹਾਰ ਜੀ ਜਪਕਾਰ ਸਭ ਸਭ 4000 ਦੇਖੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਭੂਪਤ ਇਹ ਕਰਤੀ ਵਿਨੇਕ ਨਾ ਲਿਖੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਪਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦੁਆ ਸੋ ਸਾਗ ਸਨਾ ਜਬ ਜਾਨ ਦਲੇਂਗੇ ਭਾਰੀ ਜਮਾਨ ਪਰੇ ਬਣੇ ਕਰ ਪਰਬਤ ਪੰਖ ਹਲੇ ਨਹਾਲੇਂਗੇ ਤੋਰ ਰੀਮ ਮਰੋਰ ਮਾਸਨ ਮਾਤਿਨ ਕੰਗਣ ਮਾਨ ਮਲੇਂਗੇ ਸ੍ਰੀ ਪਾ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਗਵ ਕਿਰਪਾ ਤਿਆਗ ਜਹਾਨ ਨਿਰਾਨ ਚਲੇਂਗੇ ਵੀਰ ਪਾਰ ਬੜੇ ਬਰਿਆਰ ਅਵਚਾਰੇ ਸਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਚਾਹੀਆ ਤੋਰਤ ਦੇਸ ਮਲੰਦ ਵਾਸਨ ਮਾਤਿਕ ਜਾਨ ਕੇ ਮਾਨ ਮਲਈਆ ਗਾੜੇ ਗਰਾਨ ਕੇ ਪੂਰਨ ਹਾਸ ਵਤਨ ਹੀ ਚਰਚਾਰ ਲਵਈਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਭ ਕੋ ਸਰਨਾਇਕ ਜਾਚਕ ਨੇ 101 ਦਵਈਆ ਦਾਨ ਦੇਸ ਨਿੰਦਨ ਸਚਾਰ ਨਿਸਾਚਰ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਜਵਾ ਭਗਵਾਨ ਜਪੇਂਗੇ ਜੀਵ ਜਿੱਤੇ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੇ ਪਲ ਹੀ ਪਲ ਮੇ ਸਭ ਸਾਫ ਕਟੇਂਗੇ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਤਾਪਨ ਵਾਲ ਜੈ ਚੰਨ ਪਾਪਨ ਕੇ ਬਹੁ ਫੂਜ ਕਟੇਂਗੇ ਸਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਫਿਰੇ ਜਗ ਸਤ ਸਵੇ ਲੋਭ ਜੋ ਲੋਭ ਲੋ ਅਵ ਲੋਭ ਕ ਜਪੇਂਗੇ ਮਾਨਵ ਇੰਦਰ ਗਜਿੰਦਰ ਰਾਧਪ ਜੋਨ ਤਲੋਕ ਕੋ ਰਾਜ ਕਰੇਂਗੇ ਕੋਟ ਸ਼ਨਾਨ ਜਾਗ ਕਲਾਣ ਅਨੇਕ ਸਵੰਬਰ ਸਾਜ ਬਰੇਂਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸ਼ਰ ਬਸੰਤ ਸੱਚੀ ਪਤ ਅੰਤ ਸੇਵ ਜਮ ਫਾਸ ਕਰੇਂਗੇ ਜੇ ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਕੇ ਪ੍ਰਸ ਹੈ ਪਗ ਤੇ ਨਰ ਫੇਰ ਨਾ ਦੇ ਕਰੇਂਗੇ ਕਹਾਂ ਪਿਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੈ ਬੈਠ ਰਿਹੋ ਤੱਕ ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ ਨਹਾਤ ਹੋਇਓ ਲੀਓ ਸਾਰਾ ਸੁੰਦਰ ਲੋ ਸਮੁੰਦਰ ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰਲੋਕ ਗਵਾਇਓ ਵਾਸਕੀਓ ਬਖਿਆਨ ਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੁਬਸਤ ਕਰਿਓ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਵੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਚੇਤਨ ਹੀ ਪਾਇਓ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਹਾਨ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸੁਰ ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਤੈਨੂੰ ਲਟਕਾਇਓ ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਰਵਾਤੀ ਸੁਣੀ ਕਾਹੂ ਸਾਂ ਕੋ ਸੀ ਸੁਣਵਾਇਓ ਕੋ ਬਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ ਕੋ ਮਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ ਕੂ ਕਿਰਿਆ ਔਰ ਜੋ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕੂ ਕਿਰਿਆ ਔਰ ਜੋ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸ ਮੀਨ ਕਾਇਓ ਵਾਚੇਂਦੀ ਚਾਪਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਟਕੀਸ਼ਾ ਤਬ ਚਾਨਣ ਮਨ ਰਹੇ ਮਾਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਕੋ ਪਿਤਵਾਰਾ ਹਮਰੇ ਦੋਸਤ ਸਭ ਚਮਕਾਰੋ ਆਫਸ ਦੇ ਮੋਹੇ ਬਚਾਓ ਸੁਖੀ ਵਥੇ ਮੋਰੋ ਗੁਰਵਾਰਾ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੇ ਪਿਤਾਰਾ ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦੇ ਕਰੀਏ ਸਭ ਅਰੰਗ ਆਸਮ ਕਰੀਏ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸ਼ਾ ਤੋਰ ਪਰ ਸੁਖੀ ਰਹੇ ਪਿਆਸਾ ਤੁਮੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਉਂ ਜੋ ਚਾਹ ਸਕਣ ਤੇ ਪਾਉਂ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਕਾਰੀਏ ਚਿੰਤੀ ਸੁਤਨ ਮਾਰੇ ਮਾਰੀਏ ਆਫਾਸ ਦੇ ਮੋਹੇ ਕਰੀਏ ਮਾਰਨ ਕਾਲ ਕਾਤਰਾਂ ਸਲੋਰੀ ਪੂਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ਼ਾ ਸ੍ਰੀ ਆਸ ਤੁਜੋ ਕਰੋ ਰਛਾ ਰਾਖ ਲਿਓ ਮੋਏ ਰੱਖਣ ਹਰੇ ਸਭ ਸੰਤ ਖਾਏ ਪਿਆਰੇ ਜੀਨ ਵਾਰ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਤਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਚਤਰ ਰਸ ਸੰਤਾ ਕਾਲ ਪਾਇ ਬੰਦਨ ਵਸਤਰਾ ਕਾਲ ਪਾਇ ਸ੍ਰੀ ਵਸਤਰਾ ਕਾਲ ਪਾਇ ਕਰ ਬਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਾਧਨ ਕਲਯੁਗੀ ਸੇਵੀ ਦੇਵ ਰਾਜ

अलोभमो बिन सजाए अहमेव नानक प्रभु शरणागती कर प्रसाद गुरुदेव सदी जे पश्चात क्षति अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे जेहे प्रसाद सिकंदर तन लावे इसको सिमरत परम गत पावे जेहे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे ध्याए सदा मन अंदर जेहे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पैर सिमरहु तिस रसना एह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है ध्यान जोग एह प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसे त्याग गत अवर लुभावे जेहे प्रसाद सुख तेज सुविज मन आठ पहर ता काजा सुविज जेहे प्रसाद तुझ सब को माने भुखता को जस रसन बखाने जेहे प्रसाद तेरु रहता धर्म मन सदा त्याई केवल पार ब्रह्म प्रभु जी जपत दरगह मान पावे नानक पथ से ती कर जावे जेहे प्रसाद अरोपन चुन देई जिव लावो तिस राम सुनेई जेहे प्रसाद तिरौला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जेहे प्रसाद तेरे सगल सिदर ठाके मन सरणी पर ठाकर प्रभु ताके जेहे प्रसाद तुझ को न पहुंचे मन सास सास सिमरो प्रभु उच्चे जेहे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ता की भगत करे जेहे प्रसाद अपूखन पहरीजे मन तिस सिमरत क्यों आलस कीजे जेहे प्रसाद अस्वारी मन तिस सब को कबहू नाम बसारी जेहे प्रसाद बाग मिलख तना राख त्रोए प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिसे त्याई इसे त्याए जो एक अलख है इन्हा उहा नानक तेरी रख है जेहे प्रसाद करे पुन बहुदान मन आठ पहर कर किस का ध्यान जे प्रसाद तू अचार व्यवहारी तिस प्रभु को सास सास चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप जे प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पात्र है गुर प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुने करम नाद जे प्रसाद पेख बिस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सह जे बसना जे प्रसाद हस कर चल है जेहे प्रसाद संपूर्ण फल है जेहे प्रसाद परम गत पाव है जेहे प्रसाद सुख सहज समाव है ऐसा प्रभु त्याग अव कत लागो हो गुर प्रसाद नानक मन जागो जेहे प्रसाद प्रगट संसार ते सब को मूल ना मनु विस्तार जेहे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूढ़ तू ता को जाप जेहे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जेहे प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू पास रात जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सुनाओ आप गुआए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते हुए प्रगास प्रभु दया ते कमल बगास सब सुख प्रस्थान बसते मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए सर्व नदान प्रभु तेरी मया आपो पशु न किन हो।

जल थल मईल सोए अष्टपदी कर्ण कराम कन्न जोग ज्योत पावे सोई होग खिनमय ताप तापन हारा अंत नहीं किस पारा वारा हुक्मे तार अदर रहावे हुक्मे उपजय हुम समावे हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अंतरंग प्रकार कर कर देख अपनी वड्याई नानक सब मैं रहया समाई प्रभ पावे मनुख गत पावे प्रभ पावे ता पात्र त्रावे तब पावे बिन सास्ते रखे तब पावे ता हर गुण पाखे प्रभ पावे ता पत उदारे आप करे आपन विचारे दहा सिनिया का आप स्वामी खिले बिगते अंतर जामी जो पावे सुकार करावे नानक दृष्टि अवर न आवे कौ मनुख ते क्या हुए आवे जो तिस पावे सोई करावे इसके हाथ हुए ता सब किसले जो तिस पावे सोई करे अनजानत बिख्या मेहरत है ये जानत अपने आप बचे हरमे भूला दैत सुतावे निमक माही चार कुंट फिरे आवे कर कृपा जिसे अपनी भगत।

काल कब हूँ सब की हो तरवाल, कब हूँ होए बह बड़ राजा, कब हूँ भिखारी नीच का साजा, कब हूँ अप कीर्त में आवे, कब हूँ भला भला कहावे, ज्यों प्रभ राखै तिही रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे, कब हूँ होए पंडित कहे बखियान, कब हूँ मोन तारी लावे ध्यान, कब हूँ तत तीर्थ स्नान, कब हूँ सिर साधक मुख ज्ञान, कब हूँ कीर्त हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन पर

हर संगत के पावे उस स्थान ते बहुर न आवे अंतर हुए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं बनास मन तन नाम रत्ते एक रंग सदा बत पार ब्रह्म के संग जो जल में जलिया एक खटाना क्यों ज्योति संग ज्योति समाना।

आप नवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपद जिसका अंतर राज बमान सो नरक पाती होवत सोवान जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत बिस्ता का जंत आप को कर्मवंत कहावे जन्म मरे बहु जून प्रमावे तन भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान का कृपा जिसका हृदय गरीबी बिस्तावे नानक यहाँ मुक्त आज्ञा सुख पावे तनवंता हुए कर गिरबावे तिन समान कस संग ना जावे बहु लश्कर मनुख ऊपर करे आस बल पीतरता का हुए बनास सब ते आप जाने बलवंत किन में हुए जाए पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे कुवारी गुर प्रसाद जाका मिटे अपमान सो जन नानक दरगह प्रवान कोट कर्म करे हो तारे शर्म पावे सगले बिथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार अनक यत्न कर आत्म नहीं दर हर दरगाह कहो कैसे गवे आपस को दो पला कहावे तिसे पलाई निकट ना आवे सर्व की रेन जा का मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कष्ट होए तर इसको सुख ना ही कोए जब ए जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन में फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग निकलना ही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए रब कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हो छूटे सहस खटे लक को उठता आवे तृप्तना आवे माया पाचे पावे अनक भोग भिख्या के करे नह तृप्तावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राज्य सपन मनोरथ बिरथे सब काज्य नाम रंग सब सुख होए नडभागी किसे प्राप्त होए करन कराम ने आपते आप सदा सदा नानक हर जाप करन कराम करने हार इसके हाथ कहां विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो किसी किन्नो स्वा

आवे न जाए, नानक सद ही रहया समाए। आप उपदेश है समझै आप, आपे रखिया सब कै साथ। आप किन्नो आपन विस्तार, सब कछ उचकाओ करने हार। उसते भिन्न कहो किस होए, शांत नंतर एक ऐसोए। अपने चलत आप करने हार, कौतक करे रंग पार। मन में आप माने अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रभु स्वामी, गुर प्रसाद किने बखियानी। सच सच सच सब कीना, कोट मदे किने बिरले चीना। पला पला पला तेरा रूप, अत सुंदर अपार अनूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, घट घट सुनी।

संत की दुख ना सुख देतर है, संत के दुखी को ना ही थाओ, नानक संत भावे तन लहे मलाए, संत का दुखी अद बीच के टूट है, संत का दुखी कित काज ना पहुंचे, संत के दुखी को उद्यान परमाई है, संत का दुखी उजड़ पाई है, संत का दुखी अंतर तेत होता, जो सास बिना मृतक की लोता, संत के दुखी की जड़ किसना है, अपन बीज आपे ही खाए, संत के दुखी को अवर न रखन हार, नानक संत भावे तन ले उबार, संत का दुखी यूं बिल लाए, जो जल बिहून मछली तड़पड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजे, जो पावक की गन्नी त्रापे, संत का दुखी छुटे अकेला, जो बुआड़ तिल खेत माही जहेला, संत का दुखी तम ते रहत, संत का दुखी सब मिथ्या कहत, किरत निंद का तुही पया, नानक दोष पावे सोई थिया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी नाम ना जवाई है, संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत का दुख ना तृष्टा कोई, जैसा भावे तैसा कोई होए, पया कीर्तना मेटे कोई, नानक जाने सच्चा सोए, सब कट तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, जिसे त्याग हो सास ग्रास, सब कुछ वर्त है तिसका किया, जैसा करे तैसा कोतिया, अपना खेल आप करने हार, दूसरे कौन कह विचार, जिसनु कृपा करे इसे अपन नाम दे, बड़ पागी नानक जन से सरोक, तजो स्यान सुरजनो सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पहो जाए, अष्टपदी मनुख की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक कह भगवान, जिसका दिया है अघाय, बहुर ना तृष्णा लाग आए, मारे राख है को आप, मानुख कह किस नाही हाथ, तिसका हुक्म बूझ को, जिसका नाम रख कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक विघ्न ना लागे कोए, पुस्तक मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पीयो, सदा सहेला कर ले जियो, नैनो पीक ठाकुर का रंग, साध संग बिनते सब संग, चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक ऊजल मथा, बड़ भागी तेजन जग माहे, सदा हर के गुण गाए, राम नाम जो करे विचार, हे तनवंत गण संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो के सुखी, एको एक एक पहचाने, एक उरकी ओ सो जी जाने, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिन्हें निरंजन जानिया, गुर प्रसाद अपने आप सुजे, जिसकी जानो कृष्णा बुझे, साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग ते ओ हर जन रहत, अंधन कीर्तन केवल बिखान, गृहस्थ में सोई निर्माण, एक ऊपर जिस जन की आस्था, जिसकी कटिया जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन फूक, नानक तिसे न लागे दुख, जिसको हर प्रभु मान के त्यावे, सो संत सहेला नहीं दुलावे, जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक कहो किस ते डरे, जैसा सा तैसा दिष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुर प्रसाद तत सब बूझिया, जब देखो तब सब कुछ मूल, नानक सो सुखम सोई अतूल, नह किस जन्म नह किस मरे, अपन चलत आप ही करे, आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट, आपे आप सगल में आप, अंक जुगत रच थाप थाप, अवनाशी नाही किस खंड, धारण तार रहे ब्रह्मांड, अलख अपेव पुरख प्रताप, आप जो पाए ता नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो शोभावंत, सगल संसार उदरै तिन मंत, प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, प्रभ के सेवक रूप बसान, आपे में लय कृपाल, गुरु का शब्द जप पहे निहाल, उनकी सेवा सोई लागे, जितनो कृपा कहे बड़ भागे, नाम जपत पाल है विश्राम, नानक तिन पुरुष को उत्तम करमान, जो किस करे सो प्रभ कह रंग, सदा सदा बसे हर संग, सहज सुपाए होवे सो होए, करने हार पछाने सोए, प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिसते उपजे

मुख उजल हर दरगह सोए ए वपार विरला वपार है नानक ता कै सद बलिहार है चरण साध के तुए तुए पियो हर प्रसाद को अपना जियो साध की तूर करो स्नान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा बड़भागी पाई है साध संग हर कीर्तन गाइए अनक विघन ते साधु राख है हर गुण गाये अमृत चख है ऊट गही संत हम दरियाया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक को ज्वालन हार भूखे को देवत आधार सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे पुर लिखे का लहना पाहे सब के किसका करने जोग जिस बिन दूसर हुआ ना होग डप जान सदा सदा दिन रहनी सब ते ऊच निर्मल एक करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल तिया डाट मन गुर की पतीत इस दन आवे हर प्रभ जीत पगर पगर सुनिया ते लोए जाकै हृदय को होए सच करनी सच ता की रहत सच हृदय सतमुख कैत।

रूप नर एक नारंग किस्त एह गुण ते प्रब भिन्न तिसै बजाए नानका जिसो हो ऐसो प्रथम मत परी अविनाशी ब्रह्मन मै राग मानुख की तु प्रीत त्याग तिसते परै नाही किस होए सर्व निरंतर एको सोए आपे बीना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजन पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद साध तेरी की चरनी पाओ नानक कै मन की नराओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन परन जाका नेत्र फोर किसका मंत्र ना जाने होर अंध रूप मंगल सद जाके सर्व थोक सुनिए हर तक राज मह राज जोग मह जोगी तप मह तपीसर गृहस्त मह भोगी त्याय त्याय भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मेत नाही सगल देव हारे अवगाए पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत समत ज्ञान ध्यान।

ना जाके रंग नाना पेश करे एक रंग नाना बिद किनो विस्तार प्रभ अविनाशी एक अंकार नाना चलत करे खिमाहे पूरे पूर्ण सब ठाए नाना बिद करबंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवे नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे स्मृत बेत्राम नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आगास पाताल नाम के तारे सगल अकार नाम के तारे पुरिया सपन नाम के संग उदरे सुन सरवन कर कृपा जिसे अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरुष समाहि समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बजाए तिसे सब भली सत नाम प्रकाश सुखदाई विश्वास सत नानक गुरु ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत तेज जन जा कै हृदय प्रवेश सत निरत बूझे जे कोए नाम जपत ताकी गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सृष्ट सु करने हार अवर न बूझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक ज्योत पावे सो बिस्मन बिस्म पहे बिस्माद जिन बुझिया से आया स्वाद प्रभ कै रंग राच जम रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे कोय दाते रुख काटन हार जन कै संग तरै संसार जन का सेक सोवड भागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक आद सच जुगाद सच है ते सच नानक होसी ते सच अष्टपदी चरण सत सत प्रसन्न हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखण हार नाम सत सत ध्यान हार ताप सत सत सब धारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुत सत सत जस सुनता बुझन हार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया चरण करावन तिन मूल पछानिया डांका हृदय विश्वास प्रभ्याया सत ज्ञान तिस मन प्रगटा पै ते निरपो है बसाना जिसके उपजात समाहे समाना बस समाहे ले बस गडाई ताको पिन न कहना जाई बुझे बुझन हार बबेक नारायण मिले नानक एक ठाकर का सेवक आज्ञाकारी ठाकर का सेवक सदा पुजारी ठाकर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकर के सेवक की निर्मल रीत ठाकर को सेवक जाने संग प्रभ का सेवक नाम कै रंग सेवक को प्रभ पालन हारा सेवक कीरा कै नंकारा सो सेवक जिस दया प्रवतार है नानक सो सेवक सास सास कुमार है अपने जन का प्रदा ढाक है अपने सेवक की सर पर राख है अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पत रख है ताकि गात्मित कोई न लाख है प्रभ के सेवक को न पहुंचे प्रभ के सेवक ऊंचते ऊंचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दया दिस प्रगटाया निकी की मैं कल है पसम करे लश्कर कोट लाख है जिसका सासना काटते आप ताको राखत देख कर हाथ मानस जतन करत बहु पांत तिसके करतब बिरते जात मारे ना राख है अवर ना कोई सर्व जिया का रखा सोए काहे सोच करह रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख बनानी बारंग बार बार प्रभ जपी है पी अमृत इमान तन तरपी है नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किस अवर ना ही दृष्टाया नाम तन नाम रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रास जो जन तृप्तानी मन तन नाम मै नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सदकाम बोलो जस जेह बा दिन रात प्रभ अपने जन की दात करह भगत आत्म कै चाये प्रभ अपने सो रह समाये दो हो आहोत सो जन प्रभ अपने का हुक्म पछाने जिसकी मैं मकौन बखानू जिसका गुण कै एक न जानू आठ

आपे बीजापस्पदी जब अकार इकना दृष्टिता पाप पुण तब कहते होता जब तारी आपन सुन समार तब वैर विरोध किस संकमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरक सोग कहो किसे व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत भरम अपन खेलो आप वृतीजा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रव केवल तनी अब बांध मुक्त कहो किसको गनी जब एक है हर अगम अपार नरक स्वर्ग को कौन अवतार जब निर्गुण प्रस्थ सुपाए तब शिव सक्त कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी ज्योत पर है तब कवन डर कवन कत डर है अपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अब नासी सुखे अपने आसन तन जन्म मरण को कहा बनासन जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभु एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन वादे आपन आप ही अचर जा नानक अपन रूप आप ही ऊपर जा जहाँ निर्मल पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तूता जहाँ निरंजन रंकार निर्माण तह कौन को मान कौन अपमान जहाँ स्वरूप केवल जगदीश तहाँ छल सिदर लगित कहो कीस जहाँ ज्योत स्वरूपे ज्योत संग समावे ताह के सह पूख कवन तृप्तावे कर्म कराम करने हार नानक कते का नहीं समार जब अपनी सुबा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सोत पाई जहाँ सर्व कला आप है प्रवीण ता भेद के तेव कहाँ खोचीन जब आपन आप उतारे तो सगन अप सगन कहाँ बिचारे जहाँ आपन ऊच आपन आप नेरा ता कौन ठाकर कौन कलिय तेरा विस्मर विस्मर ही विस्माद नानक अपनी गत जान हो आप जहाँ अचल अचेद अपेद समाया मुहा किसे व्याप्त माया आप को आप है आदेश एक गुण का ना ही प्रवेश जहाँ एक है एक एक भगवंता ता कौन चिंत किस लागे चिंता जहाँ अपने आप पतियारा ता कौन कहता है कौन सुनने हारा बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा नानक आप को आप है पहुंचा जहाँ प्रचू प्रपंकार एक गुण में तीनो विस्तार पाप पुण्य ता पही कहावत हो नरक को सुर्ग बंछावत आल जार माया जंजाल हो मैं मो परम पार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखान आपन खेल आप कर देखे खेल संकोच है तो नानक एक है जहाँ अवगत भगत आए आप जहाँ पसरे पसार संत परता दुह पाख का आप है तनी उनकी शोभा उनहु बनी आप है कौतिक करे अनद चोज आप है रस भुगन निर्जोग जिस पावे तिस आप नाही लावे जिस पावे तिस खेल खिलावे।

का विस्तार जंत सुभावे तसिष्ट उपाय अपने पाणे ले समाए तुम ते पिन नहीं किछ होए अपन सूत सब जगत परोए जा को प्रभु जीवा बजाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत का बेता नानक सगल सृष्टि का जेता जी जंतर सब ता कै हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखे तिस कोए न मारे सो मुआ जिस मनु बसारे तिस तज अवर कहां को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निदान बेअंत अपार नानक दास सदा बलिहार पूर्ण पूर रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव जाने आप अंतर जामी रहो ब्याप तित पाले जीन बोपांत जो जो रत्यो सो तिसे त्यात जिस पावे तिस लय मलाय भगत करह हर के गुण गाय मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हार नानक एक जानिया जन लागा हर के कहनाए जिसकी आत्म बिरथी जाए।

0: गुरु गुरपा
1: ते गान लगा बाकी गवैये सारे थक के सौ गए ते बुल्ला अद्धी रात तो मां तक सौंदा रहा ते एदी इना कु दर्द सी ते जा के जदों गाए ते फिर एक गल कहे राती जाके करे इबादत राती जागन कुत्ते ते तू उते कह लगे मता मान भी ना करी मैं रात जा के मुर्शिद अगे अज नचना पिया रात ना कुत्ते भी जागते पे राती जाके करे इबादत राती जागन कुत्ते ते तू उते भौंकण बंद मूल ना हुंदे जिने जा रूड़ी ते सुते ते तू उते कह लगे दर मालक अपने दा दर ना छड़दे भावे सौ तो वचन दुते ते तू उते चल बुलिया पीर में अमनाले नहीं तां बाजी लै गए कुत्ते ते तू उते जदों एडी दर्द भरी गल कही अनायत शाह ने देखिया कहन लगे बुला कहन लगा नहीं बुला नहीं भुला मैं भुल गया बड़ी शब्दावली प्यारी कहन लगे तू बुला कहन लगा नहीं भुला ते कुट के छाती ना ला के मैं जे तू भुला ते मैं तेरे ते दुला मैं तेरे ते कृपा की बाबा गुरु तेग बहादुर जी कह रहे ने स्वामी को करो ज्यो सदा स्वाम तस्मी नित नानक ए बिदहर भजो एक मन होए एक चित इस तरह देख के अगे हजूर ने कि चेतावनी दिती कह लगे कुछ लोग ऐसे ने जेड़े धर्म दे कर्म तो करते ने पर जिन्ना धर्म का कर्म करते ने नाल नाल पानी नालों पूंजी भी जाते हैं या यूं कह लो खीर बना लेंगे ने ते उत्ते फिर परत के वह खा कुछ उत्ते छान लेंगे साहब जी किवें महाराज कह लगे तीर्थ बरत अरदान कर कम चंगे ने कई तीर्थां ते जाते ने कई वर्त रखते ने कई दान करते ने पर साहब किन्ने धर्म के काम करके मन मैं धरै गुमान इतने थोड़ी जी ध्यान देने वाली गल है हूँ सिख ली तीर्थ की वर्त की है दान की है साहब तो बाणी में कहते हैं सिख ली तीर्थ गुर समान तीर्थ नहीं कोई सिख ली तीर्थ गुरु तो वड्डा कोई नहीं असी रोज एक सवैया पढ़ने साहब जी की बाणी अंदर कि अमै दृष्ट शुभ करै हरै अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वत करै सदा बल सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवै गुर नवनीत दरियाओ गुरुवर का तीर्थ कौन जन्म हम कालक तो मैं हजूर की बाणी विच बयंत प्रमाण मिलते ने सिख ली तीर्थ गुरु है दूसरा दान केड़ा है वर्त केड़ा है रोटी नहीं छड़नी हजूर का बाणी विच कहिंदे ने उन्हीं दुनिया तोड़े बंधना अन पानी थोड़ा खाया भाई गुरदास कहिंदे ने हौं तिस घोल घुमाया थोड़ा थोड़ा समय थोड़ा ही खावे वर्त केड़ा रखना है जे रोकना चाहना है ना ते अज सारा दिन जबान का वर्त रख ला भी अज जबान सारा दिन मैं इन्ना तेरे से कंट्रोल करना है किसी दिन निंदा नहीं करनी भावें दुश्मन भी आ जाए जे वर्त रखने से अखा ते रख जड़िया अखा पराया रूप तक दिया ने जे वर्त रखनी ते कन्ना ते रख जड़ी निंदा करते ने ध्यान रखना साहब ने जो सूतक पातक की गल की मैं एक दिन अर्ज की यही क्या थी कह लगे अक्की सूतक वेखना परतरिया परतन रूप असि पढ़ने न मन का से सूतक लोभ है देवा सूतक कूड़ अक्की सूतक वेखना परतरिया परतन रूप जे तू वर्त रखना ते साहब कि मैंने काम कर लै मिथिया ना ही रखना परत मन में प्रीत नंजन दर्द परतरिया रूप ना देख है नेत्र कह लगे इन्हों से वर्त रख इन्हों हथां से वर्त रख पैर से रख खैर सिख ली वर्त माड़िया गल्लां नूं रोक के रखे क्यों जा वर्त कि इस शरीर नूं बकार छू ना अगे साहब कहिंदे ने दान तीर्थ वर्त अर दान कर सिख ली दान की अर्थ कीती सी की के दान पुन च रुपये दौलत सब कुछ देने पर सिक्खी विच कली दान की गल यहां दूर के कली दान की गल करदे ते जिद्दन खालसे की परिभाषा दिती उसने गल की तीर्थ।